गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई, हर कीरत हमारी रह रास राहा। अर्जन के बड़ भाग बड़े रे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले।

निखुटी पान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वछल करुणा निदान अंतर जामी गरीब निवाज सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालक जुगो जुग अटल गुरता।

पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।

दान रहत दान बबेक दान बसा दान भरोसा दान दान असर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जोगा टल करम का जयकार खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा रख आप अकाल पुरख अंतर जामी वाहेगुरु। ए निरंकार अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़े अगे खुल दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। ए नमाणिया